0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात का अभी कोई फायदा नहीं। ज़ेलेंस्की के खुले खत के बाद जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ है। पुतिन ने इस खत को काफी खाम जबान के तौर पर बयान किया, जिसमें सवाल किया गया कि आया इसका मकसद मुज़ाकरात में सहूलत या रुकावट पैदा करना था। रूस के सालाना इक्तसादी फोरम से खिताब करते हुए पुतिन ने इस पैगाम पर तनकीद की और इस बात का इरादा किया कि उन्हें इस मरहले पर मुलाकात की कोई वजह नजर नहीं आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन रियासत के ज़रई इलाकों के दौरे के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा एजेंडे के अहम उमूर पर बातचीत की है। ट्रंप ने मौकफ अपनाया कि वह मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए निकले थे, लेकिन जौहरी असलहा हासिल करने से रोकने के लिए उन्होंने खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज की। उन्होंने यह भी पैगाम भी दिया कि यह सूरत हाल जल्द ही खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल आएंगे, चाहे ये किसी माहदे के जरिए हो, बहुत सख्त तरीके से, हर सूरत में ऐसा होकर रहेगा, शायद सबसे आसान रहे हों, लेकिन हम वहां से निकलेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान के जौहरी खतरे को खत्म करना था, हम ऐसा होने की इजाजत नहीं दे सकते थे, कोई भी ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था, हमने इस काम को बड़े पैमाने पर निपटा दिया है, आप देखेंगे किसी न किसी तरह यह मामला अब हल हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से मुतालिक अमल मुकम्मल होने के बाद अमरीका में पेट्रोल और गैस की कीमतें कलील वक्त में नीचे आ जाएंगी। उन्होंने अमरीकी आवाम से मजीद सब्र करने का मुतालबा किया है। एनबीसी न्यूज ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने अमरीकी हुकाम को निशाना बनाने वाली बढ़ती हुई जारहाना इसराइली जासूसी के खदशात पर इसराइल के लिए अपने काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के जायजे को बुलंद तरीन मुमकिन सतह तक बढ़ा दिया है। नेटवर्क की तरफ से बताया गया दो मौजूदा और एक साबिक अमरीकी एहलकार के मुताबिक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हालिया हफ्तों में नया जायजा जारी किया। अहलकारों ने बताया कि यह इकदाम उन खदशात से पैदा हुआ है कि इसराइल मशरक़ वुस्ता के तनाज़ियात पर ट्रंप इंतजामिया की अंदरूनी मुशावरत के बारे में बसीरत हासिल करने के लिए सीनियर अमरीकी हुकाम की निगरानी के लिए खास कोशिश कर रहा है। मौजूदा हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जायजे में 107 सफहात की दस्तावेज शामिल है, जिसमें उन मखसूस वाकयात की निशानदेही की गई है जिन्होंने अमरीका के खदशात को बढ़ाया है। यह बढ़ता हुआ अलर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान ईरान के साथ जंग और लुबनान में इसराइली फौजी हमलों पर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली एक मुबैना कशीदा फोन बातचीत भी शामिल है। मौजूदा और साबिक अमरीकी हुकाम और बैरूनी माहरीन ने कहा है कि इसराइल इस बात में गहरी दिलचस्पी रखता है कि आया ट्रंप ईरान में बड़े फौजी हमले दोबारा शुरू करने का फैसला करते हैं या जंग के मुज़ाकराती खात्मे की कोशिश में मसरूफ हैं। वाशिंगटन DC में इसराइली सफारतखाने ने इस रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा है कि यह मुकम्मल तौर पर गलत है कि इसराइल अमरीकी सरकारी हुकाम के बारे में मालूमात जमा करता है। पेंटागन ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इस कहानी को गलत करार दिया है। रूस ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ कैदियों के तबादले का एक और दौर मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत दोनों तरफ से 185 फौजी एहलकार वापस लौट आए हैं। रूस की वजारत दिफा ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में बताया कि जंगी कैदियों के इस तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने मदद फराहम की है। बयान में मजीद कहा गया है कि रिहा होने वाले

रूसी फौजी इस वक्त बेलारूस में हैं, जहां रूस के इंसानी हकूक की कमिश्नर याना लांत्रातोवाना उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। वजारत ने कहा कि रिहा होने वाले फौजी अहलकार फिलहाल बेलारूस में हैं, जहां उन्हें नफसियाती और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसके बाद उन्हें इलाज और बहाली के लिए रूस मुंतकिल किया जाएगा। यूक्रेन के कई आला हुकाम ने बताया कि इस तबादले की तैयारियां हालिया हफ्तों में शुरू हो गई थीं। यह तबादला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानब से अपने रूसी हमनसब व्लादिमीर पुतिन से 4 साल तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की अपील के एक दिन बाद हुआ है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि 5 जून को कीव हुकूमत के ज़ेर असर इलाके से 185 रूसी फौजी वापस लाए गए। इसके बदले में 185 यूक्रेनी जंगी कैदियों को भी हवाले किया गया है। सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रिहा होने वाले यूक्रेनी फौजियों में से कुछ को रूस ने 2022 से कैद कर रखा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि अपने लोगों की वापसी यूक्रेन की मुस्तकिल तरजीह है। हम हर रोज हर यूक्रेनी मर्द और औरत को कैद से आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेनी हुकाम ने फौजियों की तस्वीर भी शेयर की हैं, जिनके सर मुंडे हुए थे और वो यूक्रेन के परचम लपेटे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। और तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने जीरो वेस्ट फेस्टिवल के दौरान दूसरे दिन उसका दौरा किया, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के तस्वुर को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाता है। इस मेले में बच्चों की खुशी और बड़ों की दिलचस्पी को एक ही जगह पर देखने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम इदारों, फाउंडेशन, तंजीमों और रजाकारों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस बामकसद तकरीब में अपना हिस्सा डाला, और मैं अपने शहरियों को दावत देती हूँ कि वो आएं और जीरो वेस्ट फेस्टिवल के इस पुरकशिश माहौल को करीब से देखें। सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

करोड़ों की तादाद में बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पर घंटों खर्च करते हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म इनके तहफ्फुज के लिए बनाए गए थे या उनसे फायदा उठाने के लिए? ऑस्ट्रेलियंस पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने एक घंटे की हद मुकर्रर की है। तुर्की एजिम में कार्रवाई कर रहा है। तो इन नुकसानात की कीमत कौन अदा करेगा, वालदेन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज का मौजू टीआरटी वर्ल्ड पर नष्ट होने वाले एमरे यिलांजिक के एक मजमून से माखूज है। हम डिजिटल दुनिया में बच्चों को दरपेश खतरात, इस मसले का जिम्मेदार कौन है के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दुनिया भर की हुकूमतें बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करती हैं, जिम्मेदारी वालदेन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया से लेकर नॉर्वे तुर्की तक बहुत से मुल्क एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को सिर्फ वालदेन की निगरानी से नहीं रोका जा सकता।